प्राणम पवित्र अस्थानम सचखंडम श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री

पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही तय धारी है। देखे किता अपना धर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहब मनो भी सारी है। अपन हाथी अपना पीका सवारी है।

पौड़ी नानक अंतरा जा अपनी हरदा के परावार। आप कराए साखती फिर आप कराए मार, एक ना गली जंजीरियां एक धुरी चढ़े बिसेयार। आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार, नानक करना जिन किया फिर तसी करनी सार।

अर्जन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए, सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रीख पीख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनपौ प्रकाश

सहि सहण गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान तृण कहत त्वसर्वनाम कथय कवन।

ध्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधिक तेतीस कोर तेर की मन परिए ब्रह्मादक संकाद सीख गुण अंत न पाई अगह गहयो नहीं जाई पूर श्राब रहयो समाई जिह काटी सिलक दयाल प्रभ से जान लगे भगति हार गुर नानक जिन परसियो ते इत ओत सदा मुक्ति मैं मूरख की तक बात है कोट पराधि तरियारी गुरु नानक जिन सुनिया पीखिया से फिर गर्भास न परियारी सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्ब कला बाण आई प्रगट पई सगले जोग अंतर गुर नानक की वड्याई निरंकार आकार कर ज्योत स्वरूप अनूप दिखाया वेद कतेब अगोचरा वाहे गुरु गुर शब्द सुनाया चार वर्ण चार मजहबा चरण कवल शरणागत आया पारस परस अपरस जग अष्ट धात एक धात कराया पैरी पाए निवाय कै हाउ मैं रोग असाध मिटाया हुकम रजाई चलना गुरमुख गाड़ी राह चलाया

दुबिधा एहो फल नाही जीओ मान रे थिर रहो मत कत जाही जीओ बाहर टूढ़त बहुत दुख पावे है।

अवगुण छोड़ गुणा कौ तावहो, कर अवगुण पशुताही जीओ। सार अपसार की सार न जान है,

ढोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ जे पुली जे चुकी साई जे पुली जे चुकी साई प्रीत हिंजी काडिया

0: सपी तेरे वास तेरा कर पला तेरा घर नंद वधाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दास नदास तुद आगे बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात वधाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचै तरम हदूर करमी आपो अपनी खेने।

दुख दारू सुख रोग मया जा सुख ताम ना हो। तू करता करना में नाही जाहो करी ना हो। बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखिया रहा। जात में जोत

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया खा दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज बिडाण तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जान तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखै जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेत सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा।
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ ਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤਿਰ ਕਿਤ ਨ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब वैरन को आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंत। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिव जू अवतर। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेद। ताको करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंग भयो राव कही भूप। आंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोस्त जीते उठवाते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्व सके न कोई।
एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उवारा। जिन

दुष्ट दुख तिल हो बचाई। स्वयं पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सवै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण सवना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनह वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कन्हेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर।

चेते आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छे आरे आए ता देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता। श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले।

मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरद्वारिया गुरतामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण नेओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी सोदार रहरास साहिब जी दे पाठ जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद होवण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

सुत अपराध करत है जेते जननी चीतना राखस तेते रामैया हों बारक तेरा काहे न खंडस अवगण मेरा जे अत करोप करे करताया तां पी चीतना राखस माया चिंत

कैसेओ तरस पारा। देहे बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निसतारे। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सत गुर का दर्शन पाए जियो। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित वो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सो

है। या तन की एह बड़ाई, काहे भइया फिर तो फूलिया फूलिया, जाव दस मास उर्द मुख रहता।

करिए पूत रहन क्यों दिया। देहुरी लौबरी नार संग पई आगे सजन सुहेला। मार काट लो सब लोग कुटुंब पयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनहु रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ। झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी भ्रम सुआ। आप बंधाया

0: तुझ ही बन आवे।
1: हम अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इकोतम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाट कीरत की,

हृदय राम की ना जप है सवेरा, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पारत मस्तकाएं रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश है, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन है भगत वशल अनाथ नाथी, सर नानक पुरख अचुत है, बिलावल महला पंजवा, ताती भव न लगई पार बिन सरनाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगै न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखत दिया एका लिवलाई, रहाओ राख लिए तिन रखन हार, सा ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भे सहाई, सोहिला रा गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरता किए करते का हुए विचारो, चित कर गावो सोहिला सिवर हो सृजनहारो, तुम गावो मेरे निरभाव का सोहिला, हो वारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ, नित नित जियड़े संभालिन देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै सदा ते कवन सुमार, संबत सह लिखिया मिल कर पाओ तेल, बिनासी सड़िया जो होवै साहब स्यो मेल, घर घर एहो पहुँचा सदरे नित पवन, सदन हारै सिमरी है नानक से देवन, रागासा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको विस अनेक, बाबा जयकर करते कीर्त होए, सो कर राख बड़ाई तोय रहाओ, विश्वे चस्या घड़िया पहरा, तिती वारी माहो होआ, सूरज एक रुत अनेक, नानक करते के वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन मै थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत तेरी रहाओ, सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नायक तोहे, सहस पाद बिमल नन एक पाद, गंधवेन सहस तब गंध चलत मोही, समय जोत जोत है सोए, इस दै चानन समय चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत सुभावै सो आरती होए, हर चरण कौल मकरंद लोभत मनो आनंद नो मोहे आही प्यासा, कृपा जाल देह नानक सारंग को हो जाते तेरे नाए बासा, रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर भरिया मेरे साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिख लिखे गुर पाया, मन हार लेव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे, राव साकत हर रस साधना जाने, तनांतर हो मैं कंडा हे,
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲਹਿ ਚੁਭਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਵ ਨਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾਹੇ।

सतगुरु किने न पाया, बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु विच आप रखण कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विचों मोह चुकाया। उस तो मेह विचार है जिन सच्चे सिओ चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता।

0: साहिब एक तू जिनसे जो सच बताया, जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जान नी मन मुखी जन्म गवाया,
1: विच दुनिया का ही आया।

कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसन हार कूड सोयना कुरुपा कूड पहनन हार कूड काया कूड कपड़ कूरू।

जगतर गोर पारस मुरार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजा लहना जगतर गोर।

0: सदा कल्लिव रहे करम शिष्टाचार दुरम स्पूर जो निवे खवे कस बिमल विचार एह तत् जान्यो सर्वगत लख बिडाणी सहज पाए संचयो किरन अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रहाय लयो हर परसो कल समुल वै जन दर्शन लहने पायो मन विश्वास पायो गहर गोदर दियो गर नह नठ्यो अमे अंतर्गत पियो रिद बिगास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाध रव्यो समान निरंतर उधारो चित दारिद हरण पिखंते कल मल त्रसन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहने रसन
1: नाम अख नाम दार और नाम समाध सुख

0: दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए, सो कहो टल गुर सेविए एहनस सहज सुपाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।
1: सतगुर के माताणिया जुग जूथ समाने, अन पौ ने जा नाम टेक, जित भगत

0: रस जाने।
1: तारो संसार माया मदमोहित, अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरतवंत सदा सुख संपत, रिद सिद्ध न छोटे सथ, दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो यो तथ, ताहे कहाँ परवाह काहु की, जाके बसीस तरियो गुर हथ, ताहे कहाँ परवाह काहु की, जाके बसीस तरियो गुर हथ।
2: अंत न पावत देव सबे मनो, इंदर महासेव जोग करी, खुन भेद बिरंच बेचार रहो, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर ज्योत और जन माहे तरी।
3: अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाखस फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत वस्त्र दीन बहुसाज, सोदामा पदाते राख्या, गनका पड़त पुरै ते काज, श्री सतगुर सो

आप दे ता पाइयां हर जीओ कृपा करे ता नाम ते आइया जीओ अंदर साचा ने हो पूरे सतगुर जीओ हौ तिस सेवी दिन रात मैं कदे ना विसर जीओ कदे ना विसारी आन दिन समारी जा नाम लईता जीवा श्रवणी सुनी ता एहो मन तृप्त गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले आन दिन विवेक बुद्ध बिचरा अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरा

अन देन रह लेवलाए ता सहज समावे जीओ सहज समावे ता हर मन पावे सदा अतीत बैरागी हालत पालत सोबा जग अंतर राम नाम लेव लागे हरख सोग दोहाते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावे सत संगत मिले वड भाग ता हर रस आवे जीओ दूजा पाए दुख होए मन मुख जाम जोहे आजियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहे आजियो माया दुख मोहे आ हौ मैं रोहे आ मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेता नाहे अंत गया पछुतावे